0: YCRadio.org. This is Quiet the Last Word, and I am the voice of today's generation. How you feel about that?
1: Tú puedes ser un héroe al estar preparado para una emergencia. Primero, prepara un plan. Reúne a tu familia para planificar formas de cómo comunicarte con tus seres queridos después de una emergencia o planear una ruta de escape.
2: ¡Baymax!
3: I am not fast.
1: Prepara un equipo de suministros. En caso de una emergencia, es importante contar con suficientes alimentos para 3 días. Y no te olvides de las pilas.
4: Battery.
1: Visita ready.gov/niños para obtener más información. Patrocinado por FEMA y The Ad Council.
5: This is YC Radio's DJ Extra Small. Are you tired of going on the York College website to listen to YC Radio?
6: Well,
5: now you don't have to. Listen to YC Radio on TuneIn Radio. Download it off Google Play or the App Store right now. YC Radio, the voice of today's generation.
7: Dhoka dhadi chetavni. Apna khuni login password ya MF. A. कभी साझा न करें। कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें। अपने पासवर्ड या MF। ए. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF ए. अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
8: You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: Hey!